सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार हो के

मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचत। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी दा मालक दुर्भाषा ऋषि। चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर व्रत तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी प्यार करते ने चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, वो श्राप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखा कि इन्हें वर्त तोड़ लिया तो वह श्राप देने वास्ते तैयार हो गया, अखां गुस्से नाल लाल हो गई है। कहन लगा राजन तू मैनु भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनु जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होने कारण विद्वाना की सलाह ते मैं वर्त तोड़े है, पर दुर्भाषा ऋषि ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वाला दी उन्नू मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म कीता उस चड़ेल नू, जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नू कहा ए जड़ा राजा अमरीक है, इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनों खत्म कर दे।

को परमेश्वर किस तरह उन्हें भगत अमरीक की रक्षा की थी। नाव ने दे ठाकर देवी सुदामे त्रू अटल अजूना टरियो अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी, त्रू भगत ते कृपा की थी, भगत हेत मारियो हरनाकश, भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाक्ष का अंत किया। नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते केशव परमेश्वर नू के है, सोने केसा वाला परमेश्वर, ये वो जड़ा परमेश्वर है वो भगतां दे वास है। इस वास्ते तो अज तक वो बल राज के द्वारे से खलोता होया है। तो गुरु साहब जी भी बाणी विच कहंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन किया राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी ते अभय पद नू प्राप्त हो गया। आओ भाई तुस भी सिमरन करो दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन नू

पलक ते गया पाताल नानक, नानक बिना जहान दी दिशा कोई ना, मशरक मगरिब जनूब शुमाल नानक, कदे काशी ते कदे प्रवेश मक्के, बनया सारे आंदा सांझी वाल।

परमेश्वर दा नाम विसार के जे कोई सुख मंगदा है आख्या उस नूं तां सुपने विच भी कदे सुख प्राप्त नहीं हो सकदा। सत सगत बोलो श्री जियो तपत है बारो बार तप तप खपे बहुत बेकार जै तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिल लाए बहुता बोलन चखड़ होए विण बोले जाने सब सोए जिन कन कीते अखी नाक जिन जेबा दिती बोले तात जिन मन राखिया अग्नि पाए वाजे पवन आखे सब जाए जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालग सभा कालख दागा दाग दाग दोष मोह चलिया लाए दरगे बैसन नहीं जाए आख्या जो संसार ते आके नाम नहीं जप के जांदा उस परमेश्वर दी भगती करके नहीं जांदा ओ तां अपने मथे ते दोषां दे दाग ला के जांदा है और ऐसे दाग दोष लगे हुए मथे वाले नूं पापी नूं फिर नरक भी नहीं चलदे। सत सगत बोलो श्री जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालख दागा दाग दाग दोष मोह चलिया लाए दरगे बैसन नहीं जाए कर्म मिले आखण तेरा नाओ जित लग तरना होर नहीं थाओ जे को डूबे फिर होवे सार नानक साचा सर्वदातार। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जदों ए शब्द उत्थे उचारिया जिवें जिवें साहब जी बाणी पढ़दे हन कौड़ी दे तन दा दुख घटदा जा रहा है चरण पकड़ के कहन लगा गरीब निवाज हुण आए हो तो मैनू इस दुख तो निवृत कर दियो। ऐसे करुणा दे विच जदों अरदास कीती मन करके गुरु नानक पातशाह दे चरणा विच साहब जी कहन लगे मर्दानिया जल लै के आ भाई मर्दाना जल लिया साहब जी ने जल दे छटे कौड़ी दे शरीर ते मार के आखिया जप भाई श्री वाहिगुरु जप सतनाम श्री वाहिगुरु। जिवें जिवें कौड़ी वाहिगुरु जपद वाहिगुरु जपद उवें उवें तन दा कोड़ निवृत हो रहा है। सत सगत बोलो श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह दी बाणी सुन के कौड़ी दे तन दा कोड़ भी दूर हो गया ते अज गुरु नानक दे दर्शन करके मन भी अरोग हो गया। तन मन करके जेड़ा रोगी सी तन गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन करके तन दा भी रोग चला गया ते बाणी सुन के मन भी अरोग हो गया। सत सगत बोलो श्री साहब जी कहन लगे भाई होर मंग की मंगद गरीब निवाज बहुता धन पाया लेकिन धन दे नाल कोई सुख ना मिलिया धन पा के जे मन सुखी हो जांदा तां धन बहुत सी मैल माड़ियां पा के जे मन सुखी हो जांदा तां बहुत महल हन माड़ियां दितियां तुसी लेकिन मन तां भी सुखी ना होया तियां पुत्रां नूं पा के जे मन सुखी हुंदा तां गरीब निवाज फिर जदों शरीर कौड़ी हो गया तां उन्हां ने भी कट दिता उन्हां दा भी सुख ना मिलिया। सुख तां तेरे नाम विच है सुख तां तेरी भगती विच है सुख तां अमृत वेले उठ के जपण विच है श्री वाहिगुरु। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले आप क्या करदे समझो अमृत वेले उठ के गुरु नानक दे चरणां नाल जुड़दा है भाई उसनु कदे किसे वस्त दी कमी नहीं रह सकदी ओ तन और मन करके सदा सुखी रवेगा जो जपेगा श्री वाहिगुरु।
ਹੁਣ ਕੌੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

कितने भी चंगे कर्म कर लवे ओदे कर्म कीते होए सारे निष्फल चले जांदे। जिवें कि 68 तीर्थां

साहिबजादियां दे इस महान बलिदान नूं वेख के सरबंस दानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी महिमा

करनी है, अरदास ही करनी है, ते किसी छोटे मोटे अगे कानू करनी है। सोई त्याईये जीयड़े सिर शाहां पातशाह, जो सब तो पातशाहां तो शहन शाहां तो वड्डा है। शाहां दे सिर ते जो पातशाह है ओदा ध्यान कर, ओदी ओट तक, ओदा आसरा तक।

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा हो, मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जाती है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी, लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि उन्हूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगदा है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा है, चाल तो पता लगदा है इनू तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलन दा भी पता लगदा ते गुफ्तार तो जबान तो बोलन तो भी पता लगदा है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो ही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंहों बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंहों प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंहों गाला निकलेंगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाए।

तीन बंधां विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक कौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें उह गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच

परमेश्वर का रूप नहीं समझता। इसे वास्ते ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे। इसे वास्ते इंसान इंसान के नाल नफरत करता है। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर पूरा गुरु मिल जाए वो इन्हां गल्लां दी सोझी करांदा है कि ऐ इंसान इस संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, ओदे बनाए हो जीवां नाल प्यार कर, कोई भी बेगाना नहीं। पर इन्हां गल्लां दा

कहंदे ने सुरमा। गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई, राम नाम तो बगैर जीवन

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नास हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारियां भुखां तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है। हर इंसान भज रहा है, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे। सुख बहुती माया विच भी नहीं।

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाने ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदिआं दुख भुल जांदे ने हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानू तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश देंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं।

ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो ओ परमेश्वर तू भुलिया होया। ते जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ए परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ए परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। ते सतगुरु जी कहंदे ने, ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके ओदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है ता परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हन, गुरु दा मेल किन्ना जरूरी।

दोनों भगत ने भगती दोनों भरा करदे ने, किसे धनी पुरश ने दोनों भरावां नूं भगत जान करके अपने घर बुलाया।

दोनों जने तानी सेठ दे घर पहुंचे। उस तानी पुरुष ने दोना भगतां दी सेवा कीती, अन्न जल छकाया और तुरन लगे हैं। दोना भरावां नूं दक्षिणा दीती, माया पेट कीती। होता वड्डा सी, वड्डे नूं वड्डा समझ के चोखी माया। ब्रह्मा छोटा सी, छोटा समझ के थोड़ी माया दीती। पर ब्रह्मा चलाक सी, उन्हें दोनों पेटावां कठियां कर लिया। घर आके अद्धी अद्धी

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आपां कट्ठे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तो झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कुछ सेवा का चा है, बहुत घट होंगे सेवा वाले, बहुते थे अपने स्वार्थ वास्ते ये नारा लगाते ने असा सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंगी, सेवा ते मन होंगी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उस जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनूं गोते दे दे के मारांगा, और इस गल दा बदला लवांगा कि तू मैनूं श्राप दित्ता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नूं भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्ताती बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन। राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कार ऊपर कढ़ निस्तारे। गज पत पार उतारे, अनेकां शब्दां विच इस साखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और उस समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने। इह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुम दे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा। ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया, कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए का जोर चलिया। हाथी

अंदर बसते हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जड़े वैरी सन ए पातशाह हूं ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं। ओ भी हुन मेरा बुरा नहीं।

कोई अवर ना सूझा हर नामो अंत छड़ाता, क्योंकि जीवन तो सुख देंदा ही देंदा है, जीवन को बाद कौन बाह फड़ेगा, कौन छड़ावेगा स्वाय प्रभु दे नाम दे। ते जिस सतगुरु ने इस नाम दे लड़ लाया, हर नाम दिया गुर पर उपकारी, धन धन गुरु का पिता माता, वो आप दा तन ओदे माता पिता भी तन। सतगुर अपने को सदा नमस्कारी, मैं ओ सतगुरु सदा नमस्कार करा, जित मिले हर नाम मैं जाता, जिसने जाग अंदर कुदरत वरताई। आम तौर ते महापुरुषा ने वड्याईयां प्राप्त करके बख्शा लैके अपनी पूजा करवाई, अपना सत्कार कराए, लेकिन धन गुरु नानक ने निरंकार नाल जोड़े है। आ जेड़ी पौड़ी भाई साहब भाई गुरदास जी ने कही है, तरी निशानी कौंस दी, मक्के अंदर पूज कराई, मक्के अंदर गुरु नानक दी एक खड़ाम पई, हाजी जांदे ने हज करदे ने इस खड़ाम नूं मत्था टेक, लेकिन गुरु नानक ने नहीं कहा मेरी खड़ाम नूं मत्था टेकना। गुरु नानक तो मक्के अंदर भी ये कहंदे ने प्रभु की पूजा करो, उन्हां तां प्रभु की पूजा कराई। ये गल वखरी है कि प्रभु नाल जोड़न वाले की खड़ाम का भी सत्कार अज तक हुंदा चले आ रहा। जिथे जाए जगत विच एक मक्के की गल की, बाबे बाज ना खाली जाई, संसार ते जिथे भी गुरु नानक दे चरण पए ने लोकां दे जीवन बदलते चले गए। जेड़ा जेड़ा भी गुरु नानक दे सामने आया ओदे जीवन च तब्दीली आउंदी चली गई। नाम दे सदका गुरमत दे सदका घर घर बाबा पूजी है, हिंदू मुसलमान गुआई, घर घर च गुरु नानक की जय जयकार हो रही है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान चाहे कोई होर मत वाला।

0: है भंग प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ। बाबा जी असी भी उन्होंने दर्शन करन आया किथे मिलेंगे?
0: सचखंड विखे।
1: सचखंड?
0: हां बेटी गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जाग राजे ने ता फिर साडे पागां च उन्होंने दर्शन नहीं। निराश ना हो बेटे उन्होंने रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख साहब की सेवा करा रहे ने।
1: तुंग पिंड?
0: हां धन गुरु अमरदास धन गुरु रामदास
1: धन गुरु अमरदास
2: धन गुरु रामदास।
1: किन्नी सोनी था है। तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंडों जाके कुछ खान नू लैनी नाले पता कर लांगे तुंग पिंड किन्नी दूर है। अच्छा
2: छेती आना। धन गुरु रामदास

0: मैं ठीक हो गया, मेरा रूप तो पड़ गया, मैं चल फिर सकता। पंजा जी ने एक तेरे से दुख का फल है जो अज मैं नवे जीवन मिले। रजनी रजनी मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो पड़ गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाने नहीं रजनी जी?
1: मैं कहने मेरे पति जिन्होंने मैं ऐसी छुटकी कहीं से किसी नहीं पूछे नहीं। मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चंपूर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोलगोल लग गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है पर थोड़ा रोग के भी ठीक होया?
0: ये सारी करामात चलती है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई कागो हंस करी, तो मैं रेड़ता रेड़ता ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नु फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म धोते पैसे।

0: पत्नी तू तान्य पुत्र ते तान्य तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश।
1: नानक भक्ता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश।
2: बेटी
1: पिताजी
2: मैं क्षमा कर दे बेटी।
1: पिताजी मां
2: बेटी मैं बड़ा शर्मिंदा।
1: यात्रा न को पिताजी।
2: हाँ बेटी मैं वैसा तू सच ही ऐसी जिस परमात्मा से तेरा विश्वास वो सच में सर्वशक्तिमान उस दिन भी लाभ परंपरा है।
3: राजा दूनीचंद
2: नहीं संत जी सिर्फ दूनीचंद को मैं अपने अहंकार के कारण राजपाठ के लायक नहीं रहा ते हूं मैं वही राह बना ली है जेड़ी मेरी बेटी ने मैंने दसी है।
1: पिताजी
2: बेटी मैं इसलिए कह रहा सा तुम घर जाओ।
1: नहीं पिताजी जिथों मेरे पति ने नवा जीवन मिले सारे लिए कोई थान सुलखनी है।
0: रजनी ठीक कहती है राजा दूनीचंद सारी तीर्थ यात्रा ते तपस्या का फल समुचे तौर ते ऐसे स्थान ते मिले ए धरती बड़ी पावन है एनु ऋषिया मुनिया का वरदान है। ए बेरी दुख पंजनी बेरी है ते ए छपड़ी अमृत का कुंड है।
4: अमृत के इसे कुंड से गुलाम दास जी ने पहला टक लगा के इस अमृत सरोवर का रूप दिता जिथे अज लखा इंसान इनान करके मन निर्मल और तन पंचन करते हैं। की हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई अमृत सरोवर के चौवां कूटा वाल खुले दर हर एक लिए सदा ही खुले रहते हैं।

समझदार सोझी वाले एक होर रस भी है जिन्हों नाम का रस कहते हरी का रस कहते होर बड़े स्वाद तू वेखे हो मालक ने बड़ी प्यारी रचना बनाई साढ़े जेड़े ज्ञान इंद्रे ने ना पांच ज्ञान इंद्रे फाइव सेंसेस अखा वेख दिया जीभ चखदी कान सुनदे ने नक सुंघदा है शरीर दी त्वचा शरीर दी स्किन जो है छो के पता लाउंदी आला दुआला की है लेकिन इहदे नाल इक होर भी गल है इन्हां पंजां ही ज्ञान इंद्रियां च मालक ने रस भी पा छड़े स्वाद भर छड़े अखां वेखदियां भी ने वेखण दा रस भी लैंदियां जे तां नजारा वधिया है ते अखां रस लैंदियां ते जे नहीं तां फिर मूंह दूजे पासे भी हो जांदा जे सुनी जाण वाली आवाज सुरीली है रस विच है सुर विच है ते बंदा ध्यान नाल सुणदा है बल्कि हमारदन गोश सारा शरीर कानी बन जांदा है पूरा ध्यान पर जे वो आवाज बेसुरी होवे ते कन्ना चुंगला भी दे लेंदा अणभौंदा शोर होवे ते नहीं भी

स्वामी जानते बिरथा ना कोई ओ सच्चे वाहगुरु नाल जुड़न वाला बंदा कदे निराश नहीं होया। भागा नाले जन्म प्राप्त होया ते कई बार बंदे दा रसा विच ही बीत जांदा, रसा विच ही लंघ जांदा। वड़े भाग रतन जन्म पाया, रतन जन्म कीमती जन्म, हीरिया तो कीमती जन्म, ते निके निके स्वादा च बीत जावे ते गल कोई ना होई, सौदा बड़ा महंगा रहे। वड़े भाग रतन जन्म पाया, करो कृपा कृपाला, साध संग नानक गुण गावे सिमरे सदा गोपाला। मेरे साहेब मेरे ते रहमत करो, मैनू ए रस आ जावे, मैनू ए स्वाद आ जावे, तेरा सिमरन हिरदे च वस जा, सत्संगिया नाल रल के मैं तेरा जस गावां ते इहदे विचों रस मैनू आ जा, ए रस आ जावे ना। धन गुरु नानक ने मरदाने नूं इक गल कही सी, भाई मरदाना कहन लगा पातशाह साहिब तां ओह नजारा कर रहे ने मलक भागो दियां, उन्हां पकवाना पूड़ियां विचों साहिब लहू कढ के दिखा रहे ने, भाई लालो दे कोधरे विचों दुध कढ के विखा रहे ने, ते भाई मरदाना तां कोल बैठा सी, उहने दो चार बुरकियां मलक भागो दियां वी पा लईआं सन, उहने इहदा वी रस लिया सी। गुरु नानक नूं कहण लगा पातशाह तुसी तां अपने तौर ते साबित कर रहे हो केड़ा ठीक है ते केड़ा गलत है, पर जे मैं तुहानूं सच्ची गल हिरदे दी दसां, सुनन वाले सुन रहे ने, धन गुरु नानक कहण लगे मरदाने दस हिरदे दी गल दस। कहण लगा पातशाह सच्ची गल मैं तुहानूं दसां, इत्थे किन्ने भोजन पए ने ते भाई लालो दे घर केवल प्रशादा सुखा प्रशादा सी, पर उथे रस बड़ा आया, उथे स्वाद बड़ा आया। धन गुरु नानक ने उत्तर दिता सी मरदाने आ, स्वाद रोटियां दा नहीं, स्वाद कोधरे या पूड़ियां दा नहीं, स्वाद भोजन दा नहीं, उथे भगती सी इथे विखाद है, उथे प्यार सी इथे नफरत है, इथे वखरेवे ने हंकार है, उथे निम्रता सी। मरदाने आ इस करके मलक भागो दे घर तेनू स्वाद नहीं आउणा, भोजन बड़ा वधिया, इन्हें खेचल भी बड़ी की है, पैसे भी बड़े इस भोजन से लाए ने, पर जो रस तेन ता नहीं आ सकता पिया क्योंकि इतने प्यार कोई नहीं इस प्रशादे। वैसे भी तुसा वेखिया भुख लगी हो साधारण प्रशादा भी कई बार रस दे जाता है, भुख ना लगी हो तरह तरह के भोजन भी गल नहीं बना। पहली गलत है मंग हो अंदर, दूजी गलत है कि माहौल हो आला दुआला वातावरण प्यार भरिया हो, रस है मित्र के घर का रुखा मिसा भी चंगा लगता है, शत्रु दे घर दा दुश्मन दे घर दा तरह तरह दा भोजन भी जेड़ा नफरत दे कारण दा बन जांदा है। महाराज कहंदे ने इसे तरह रस बंदा लभदा तां है उन्हां चीजां च, उन्हां च है नहीं, रस जिथे टिकिया मनुख दे अपने अंदर है, हिरण दी नाभी विच कस्तूरी हुंदी, ओदी खुशबू उस नूं परेशान करदी, ओह खुशबू बाहरों लभदा भटकदा फिरदा है, इधर उधर भज्जा फिरदा है, लेकिन जिस वेले हार के थक के डिग पैंदा है ना, ते थके हुए मरदे मरदे दा मुंह जेड़ा है ओ अपने पेट नाल जा लगे, उदों समझ आउंदी ओह रास्ता इत्थे ही सी, मेरे ही पेट विच सी, मेरे ही अंदर सी, मैं एवें भटकदा रह गया। मनुख दे भी अंदर रस है, एवें बाहर भटकदा है। साहिब कहंदे ने